ऐ सनम हमको सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं. एंड स्टिकिंग इन दिस और स्टिकिंग विद द थीम ऑफ द 90s एंड कुमार सानू एंड अलका याग्निक, हाउ इज दिस क्लासिक?